0: मिनी बंदूक के खास प्रोग्राम तो के तेरे
1: दिव्य राज्य के मिनिमम कब की तारीख
2: इंग्रेसिंग ऐतिहासिक हिमायत वे राज्य मिनिमम कल्पनों में तारीखी एग्रीमेंट का सोय करें बुनी नवार से ते का फर्स्ट रस फर्स्ट पर नाहरोगे जुलाई माह के सब बीस
0: दिव्य हिंग मिनिमम कंग मान पुरा गए

0: 26 जुलाई
1: दिवराज जाए के मिनिमम दोस
2: मी दकी दिवराज जाए के उफावे मिनिमम दोस मी काम के मुस्तकबल कुरिय गेंदियुमा बेरगे एवस नुफुज नेति अमां कमाए उफावे कमाए एको मी दिवे ही गामु कुरिय दाते एकमगे उफावे कमगे एहसास वर बडक कुरेवे एहेन गाम मेगे अळवति कमगा ओन्ना गाम में नमा अब्दु इस्मी फेन्ननी हंगुराम कुरुं नुवता एगाव में गरायतुं उले निकमितिकां। मिकां तत्तका विस्नाली मा इहुसास कुरेवे अलगन मेंन लिविफा मेवती वर बोडु नियुमतेकां। एहें कमुं मी उफावरे मिनुवं दोहगे हेवतु मा तहुनिया तिया मेहा बेफुरुना अरिस कुरें। उफावरे मिनुवं दोहके दे। शुकुरिया।

0: අනෙක්කාවස් හම වරන් උපාවරි මිනිවන් දොහකන් හුරිහාර අන එහුන් තෙරෙන්නඟ අරිස්කොරන් හම හම මියදුගවස් හම මේ ස්ටඩියෝ එතෙරෙන්න ස්ටඩියෝ බේරු මිදරණි හම වරකින හරකත්තක කොරමුන් දැන් හම ෆහ කොල්ලව ස්ටඩියෝ කුරගන්ස බෑග වරකින මසෙක්කතක සැබර් හම ගුළුමග ෆුඩසත සැබයි හම ප්‍රෝග්‍රෑම් ග බෑරුම තිනෙ තිනෙ හතර සුමෙ හය මිනම්බර ගොණවෙ දැන් මිහාරු මිහත්ති කුජක ගොළු ෆදෝ
1: गोड़ा ले फम आते अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: हायरा हाल केने ता
2: रंगर
0: मिनिमम दोस वे में हायरा के कुदेन बणलाने हायरा के शोर तक की को बहायरा
1: मिनिमम दोस सा महायरा हेतु का होरी अच्छे ही दत्त में ना ख्याल देबा
2: वरा
1: उफावे कौन कम का है मैं उफा वाणी
2: मिनिमम दोसेमा
1: मिनिमम दोसेमा हम हमें उफा वाणी में को दे
0: मिनिमम दोसेमा तो मिनिमम दोसेमा वरा हास कंद तक वैसे बन हम प्रोग्राम का से वरा हास मसे के तक को बताइयो तो मसे के तक
2: लब्बा
0: एम हिका हम मसे के तक जहिलन दो
1: एका कुन दिहा एका मिया दो नंबर ता मेरेंगे एगे तेरेन दे मियोती नेगेफा एम कोन नंबर एं हाइरा ना गाणी ekakun dihe tine
0: tine
1: tine me datten emme hasa e number hinga batine goy kula balalando
0: tine gama ti rakkola edo anikkaves
1: rakkola hasa number go me ti datten emme kamuda kula inga tine ke datten emme kamuda number rata ke datten emme kamuda kula den rakkola ga masekkato go me honnani gaumiya to ramz kodde tantana takeccha gule goton sual inga tayyarta
2: लब्बा
1: केता कोदेम में आते टीम का मिति भी
0: मम्मा बाप्पा बेबे रत्ता
2: मम्मा दोंती
1: मम्मा दोंती आ रंगड़े
0: मैं महामा वरा वरा रेडी कब हो रही था
1: ऐसा मसूआल कि दिवे ही राज्य के गाँव में दिदा का होनने कितक कुला है
2: तीन कुला
1: ऐतिहारी जॉब देखा नुस जहूड़ भी कुछ मेरे को दिन ना नुझे ऐतिहारी जॉब देखा बस जॉब रंगड़ लेंगे हम भी माँ जॉब रंगड़ कॉल दे मम्मी और
0: तीन शायद को तो अनेक का जॉब देने इसमें हम मैं तीन हार अने गुरुवार तक गोस दो
1: आड़ो हाँ ते बे को दिन ना की क्या बोने लाने
0: हायरा
2: पर बहुत शुक्रिया एक दिन
1: एक दिन ना पर बहुत शुक्रिया
0: ओके
1: हाय राया एम वे मा गुरुवार ગોસ્સામ્યતી હાઈરાવેસ હાઈરાવેસ ગોરવાતુગા દતમે નન લિયલાફા મિહારો અનિકાસ મેઓળણી બેરુતરેન લશણના મહેક્કા ગુડાલા લશણ મહેક
3: અસ્સલામુ અલયકુમ અનિકાવેસ મે બદલ કોલી બેરુતરેન લશણના મહેક દે મિગડીગા અળગુણ મે અદિવેસ મે હુન મે હોરી જમહોરી મેદાનુગા જમહોરી દુ મિનિવન દુસ વીમા ಮಿತಾಂಗ ವರ ಬಾರ ಲವಜಾಫ ಹಮ ಕುದಿನ್ನ ಅಡು ಇವೇನ ಕನ್ನ ಮಿಗಡಿಗ ಲವಜಾಫ ಹುರಿ ಅಡು ದೆ ಮಿಗಡಿಗ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಹ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಬಹುರಿ ಅಣಕಾಸ್ ಮಸಕತೆ ಕೊಲ್ಲಂ ದೆ ಕುದಿನ್ ಆಸ
4: ಮೇ ಕೊನ್ ದೆ ಕುದಿನ್ ನೌ ನೌಶಿನ್ ಮೇ ಅದು ಕಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಅಣೆ ಜುಮೂರಿ ಮಾದಾಣಂ ಆಸ ಮೇಳನಿ
5: ಜುಮ್ಲೈ ಕಿಯಾದೆ
4: ಜುಮ್ಲೈ ಕಿಯಾದೆ

0: 26 जुलाई
1: गृहराज जय के मिनिमम दिवस
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम मिया दकी दिवेह राज्य के मिनिवन दोस मिनिवन दोस आम अलगन वाला उफावे मिनिवन कम के वाला मुहिम कम है राज्य के फर्स्ट दोस एवना मिनिवन दोस आम अलगन में उफावे अलगन अब दोस इतनी राज्य मिनिवन गांव में कम का ले बु मिनिवन दो हो गए है ऐसे मात होनिया राज्य के लोगों जो हो रहा कोड़ा को जिन्ना आरिस करे

0: ते मिनवान तो हक कुले के मे बेबे दिदन कुम गे रस्मियात का दिदने कुम के तुरुं दुहा कुले खास दुआए बिस्मे बनी आकोफा
1: अलमेंगे दीना आगीदा रक्का तेरी को दिवां दे अलमेंगे विरस कला को अलमेंगे फाफ तकाई अलमेंगे कंत तवगा हद्दु फानला दियुम के कु अलमें नफुसवां दे Adi tedumavuga alamenge fatila tasabidu kurabva dev. Adi kafiru vegemva gaumutakuge macha alamenna nasru devva dev. Alamenge virraskalako. Alamenge rajyege kankotavuga amannaman kamai. Sulha masalaskamuge hiyavahi kanda mahattava dev. Alamenge rajyai rajyege emmeha rayitun. Huriha nurakka takum salama kuddhva dev.
0: Maleka mi podukong anumata khasa didinungungum ke rasmiyatu pevi kamkavi namavis. Armenna komme hadkeves minavandves mi fahakureveni raja ke huriha rashikaves mi gotang hama didinikum ke rasmiyatak huriya ke.

उफा वेर मिनी मंदो हकंगे दें दें मिनी मंगाओ में गोले दें थी असलो वरे हिंग हमें जहे दें एक इस बाय कंग आंसर कोरा करनो जहे तो गाओ मुंबेर उगे दें कम कहागी की मिनी मंग कंग हासिल करूं गासलो फारोदुन नंगे उन्न एक मी मुरिहा का में गोइस फारोदुन नंग उन्न का फारोदी मिनी मंग कंग दिवें जहे कंग बोल कोरा ना दिवस सो अनेंगे कम कोरा हिंग हमें जहे दिवेराजे मिनी मंग गाओ में गोतो कोण ना थे मिहारो बाय कंग कंग दें हास को माली गोतों तंकोलें उन्दा गोदता दिवेराजे का दें यहाँ गिना मी फुर्सत तकें नोवे हास को मी जुआन जी mehar la coding me then I mean ke muskuri ne no pakena and me some lived experience me ka ek hal fursat ta nonani male gotun ehnuniya mun den ane var hen hamise he gaum me ole just ha mai kala kantatta beenu mani mehar

उफा वेर मिनी वंदो हकंगे दें दें मिनी वंग गाँव में गोले बैठे असल वर हिंग हमें जहे दें एक इस बार एक आंसर करा करनो जहे तो गाँव मुंबई रोगे दें एक हम कहागी की मिनी वंग कंग हासिल करूं गासल फारुदुन नंगे उन्ना एक हमी पुरिहा का में गोइस फारुदुन नंग उन्ना का फारुदी मिनी वंग कंग दिवें जहे कंग बोल करंग आदि वेस सो अनेंगे एक हम को रहेंग हमें जहे दिवेराज मिनी वंग गाँव में गोत कोण आते मिहारो बाइक कंग कंग दें हासको माली गोतों तंकोले गुंदा गोदता दिवेराज जग दें यहाँ गिना मी फुर्सत तके नोवे हासको मी जुआन जेल मिहार लाखो दें मी दें अरमेंस के मुस्कुरी में नो पके ना अरमें सम लिव्ड एक्सपीरियंस मी का एक हाल फुर्सत तन नोनेरी माली गोतों ऐहन नोनिया मुंदे गने हम वर हिंग हम जहे गाँव में मी ओले जस्ट हमारे कहाँ लगान तक का बेड़ू मणि मिहार

0: Rafael. Mire, ves mi vi. Ikka kawisa de kado.
1: Oh.
0: Rafael handa nge porta. Em porta mahar men badda ire.
1: Kiwe haran ire handa na tim. Ei anna ves bara khasare. Mire nunas bare ve kom mere. Haran na ire handa kote.
0: Kiwe re haasavi.
1: Ei. Ei do. ऐ अरे वारा री त्यांग हम कुछ जको हाल वजह ही पड़ता ऐ तेरे बेवने माँ अति ये के पाऊँ ये कुछ जा हरे गेहतो का बरा खास सवे माँ ऐ सब बके
0: ऐ सब बने
1: ने अरे हो रिहा कमें गुलिफा बने त्यांग हम कुछ जाया अरे त्यांग हम कुछ जा मैं बुने है ना हरना ये को नोवे ना मेरे यहाँ का माँ खास रह कनुआ ना करे खास से नोट
0: नो इरे खास रे करनुआ ना मा आर में के कोड मिसाब करना ना
1: दैट्स ट्रू ती पुनी बरर रगड़ वाह के नहीं ना दिन मैं गोड़न दिन उन्ना ने हम मिसाब को था
0: मैं कोड में परे रगड़ कोड में का ऐनोनी ऐंगी मिसाब का किंता Rafael Ben Vanita?
1: Yes, of course. Hey, come on. Naina Benu wa kamu wa namenge.
0: Dengar Benu nu wici ya. Eru.
1: Eru. Eru den warat derawa.
0: Eke be.
1: Jawab enge soal kebe. Naina tikuran.
0: जवाब आ दो हाँ ही तो
1: ओके हम यूँ ने आर की बोलना भी
0: ते ही तो कोइंगे इच्छे
1: आर ना कवाह का आ दो हाँ ही तुम तो तेंती बोले
0: राफिल के होरी हम आगे तक के सारे आ दो हाँ नहीं वारा आ दो हाँ ही तो नहीं
1: ओ की ने पुरी नहीं वाह करना पुनी
0: ते मैं पुनी ही नहीं आ रहा क्या दे बहन
1: ओके चलो मरा

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य क्या डूं